0: ये खबरें एनएच के वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। आलमी तिजारती तंजीम WTO की डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोंजो एवियाला ने खबरदार किया है कि आलमी तिजारती निज़ाम 80 सालों में अपनी सबसे बड़ी रुकावटों का सामना कर रहा है। पीर को टोक्यो में एनएचके को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने निशानदेही की कि जहां दुनिया ने अमरीका की जानिब से महसूलाती इकदाम देखे हैं, वहीं दीगर WTO अराकीन ने भी मुख्तलिफ इकसाम के इकदाम नाफिज किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि निज़ाम में इस्लाहात नहीं हो रही और यह निज़ाम वक्त के साथ हम आहंग नहीं हो रहा। WTO अपने फैसला साजी के अमल में इस्लाहात की कोशिश कर रही है। इसके अहम चैलेंजेस में से एक ये है कि तमाम अराकीन के दरमियान इत्तफाक राय की शर्त की वजह से इसकी सरगर्मियां मफलूज हैं। अगरचे तंजीम ने मार्च में एक वजारती इजलास मुनाकिद किया, लेकिन तरीक़ाकार मंजूर करने में नाकाम रही। ओकोंजो एवियाला ने इस नाकामी की वजह अराकीन के दरमियान दीगर मसाइल पर इख्तलाफात को करार दिया, लेकिन जोर दिया कि पेशरफ्त हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि WTO अब भी अहमियत रखती है और निशानदेही की कि आलमी तजारत का 3/4 हिस्सा WTO की शराइत पर हो रहा है। जापान की मैशियत मुसलसल दूसरी सामाही में फैली है। इस नमू की बुनियादी वजह बरामदात में बहाली और सारिफ खर्च में इजाफा था। काबीना दफ्तर ने जनवरी से मार्च तक की मुद्दत के लिए इब्तदाई आदादोशुमार मंगल को जारी किए हैं। उनके मुताबिक अफरात जर के रद्दोबदल के बाद मजमू कौमी पैदावार गुजश्ता सामाही के मुकाबले में 0.5% बढ़ी है। सालाना बुनियाद पर यह शरह 2.1% बनती है। इनफरादी खर्च मजमू कौमी पैदावार के निसफ से ज्यादा है। यह पिछले 3 महीनों के मुकाबले में 0.3% बढ़ा क्योंकि सार्फिन ने कपड़ों और बाहर खाने पर ज्यादा खर्च किया है। अमरीका को गाड़ियों की तरसील में बहाली के बायस बरामदात में 1.7% इजाफा हुआ। ये वाशिंगटन के महसूलात की वजह से होने वाली गिरावट के बाद की बहाली है। काबीना दफ्तर का कहना है कि ईरान तनाजे के असरात महदूद थे, तहम तवील मुद्दती नमू के बारे में तशवीश मौजूद है क्योंकि खाम तेल की मुसलसल बुलंद कीमतें कुछ कारोबारों पर बोझ डाल रही हैं।
1: और सामीन, आखिर में आज की अहम खबरों का खुलासा। हुकूमत जापान और हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें मशरक वस्ती की मौजूदा सूरतेहाल तूल पकड़ने की सूरत में मुमकिन इक्तिसादी असरात से निपटने के लिए इकदामात कर रही हैं। जापान ने तेल पैदा करने वाले बड़े मुल्क ब्राजील से कहा है कि वो खाम फराहमी का उसूल यकीनी बनाने में मदद दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज कहा है कि उन्होंने ईरान पर मंसूबा शुदा हमले को रोकने का फैसला किया है जो मंगल के रोज किया जाना तय था। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 20 मई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खवानो से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ई जे म्योन के बीच दक्षिण कोरिया में शिखर वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति को अधिक मजबूत बनाने, विशेष रूप से संपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र का भंडार बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। ये वार्ता मंगलवार को ई जे म्योन के गृहनगर आंदोन में आयोजित हुई। दोनों की आखिरी मुलाकात जनवरी में जापान में हुई थी। ताकाइची ने बैठक में कहा कि खास तौर से पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समय बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ई जे म्योन और मेरे नेतृत्व में जापान और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों को सकारात्मक गति से आगे बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाएं। बाद में दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया। ताकाइची ने कहा कि वे पश्चिम एशिया में स्थिति को शांत करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए, जिसमें हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की स्वतंत्र

0: सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को साझा करने सहित ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। ताकाइची ने आगे कहा कि वे इस समझौते के विवरण पर काम करेंगे। इस बीच ई जे म्योन ने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए अमेरिका और हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमला करने की संभावना को दोहराते हुए यह भी संकेत दिया है कि वे आगामी दिनों में बातचीत के दौरान ईरान की प्रतिक्रिया पर नजर रखने की योजना बना रहे हैं। संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से चल रही वार्ता का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि ईरान ने किसी भी सैन्य आक्रमण का सामना करने की अपनी तत्परता का संकेत दिया है। ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौता करने के लिए मिन्नतें कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि हमें उन्हें एक और बड़ा झटका देना पड़े। अमरीकी राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिया कि वे सीमित समय के लिए ईरान की प्रतिक्रिया पर नजर रखेंगे। इस बीच ईरान के विदेश उपमंत्री काजेम गरीबाबादी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अमेरिका के अनुसार उसने बातचीत को मौका देने के लिए ईरान पर हमले अस्थायी रूप से रोक दिए हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका यह भी कह रहा है कि वो किसी भी क्षण बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह एक धमकी को शांति का अवसर बताने जैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान एकजुटता और दृढ़ता से किसी भी सैन्य आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार है।
1: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: संयुक्त अरब अमीरात पर हालिया ड्रोन हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने दोहराया है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अस्वीकार्य हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के अधिकारियों ने रविवार को घोषणा की कि ड्रोन हमले के कारण देश के पश्चिमी हिस्से में स्थित बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक विद्युत जनरेटर में आग लग गई। IAEA के महानिदेशक रफायल मारियानो ग्रोसी ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने संयंत्र में विकिरण के स्तर को सामान्य बताया और कहा कि किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि संयंत्र काम कर रहा है, इसलिए हमला होने पर रेडियोधर्मी विकिरण का बहुत अधिक रिसाव हो सकता है। ग्रोसी ने यूक्रेन और ईरान में स्थित परमाणु संयंत्रों का उदाहरण देते हुए इस बात पर जोर दिया कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत संरक्षित हैं। G7 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने पेरिस में अपनी 2 दिवसीय वार्ता समाप्त कर ली है। उन्होंने एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर ईरान संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक जोखिमों और नए AI मॉडलों से पैदा खतरों से निपटने के लिए सहयोग का आह्वान किया है। वक्तव्य में जोर दिया गया है कि ईरान संघर्ष के चलते आर्थिक विकास में बाधा और मुद्रास्फीति के जोखिम बढ़ गए हैं। वक्तव्य में क्लॉड मिथोस जैसे उच्च क्षमता वाले नए AI मॉडलों और वित्तीय व्यवस्थाओं को उनसे होने वाले खतरों पर भी बात की गई। G7 ने कहा कि सूचना साझा करने के प्रयास बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीके ढूंढने के लिए वो काम करेगा। G7 ने महत्वपूर्ण खनिजों पर मनमाने निर्यात प्रतिबंधों पर भी चिंता व्यक्त की। उसका कहना है कि ये प्रतिबंध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं। ऐसा लगता है कि ये बात चीन के संदर्भ में कही गई। समूह आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए G7 देशों और समान विचारधारा वाले साझेदारों के बीच सहयोग मजबूत करने तथा बढ़ाने का इरादा रखता है। इस योजना में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है।

0: यूनिफिकेशन चर्च के नाम से ज्ञात धार्मिक समूह के परिसमापक ने जापान में संगठन के पीड़ितों से मुआवजे के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। टोक्यो उच्च न्यायालय ने मार्च में इस समूह को देश में धार्मिक निगम के तौर पर भंग करने का आदेश दिया था। न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक अब अगला कदम उठा रहा है। परिसमापक बुधवार से एक वर्ष तक मुआवजे के लिए आवेदन स्वीकार करेगा। परिसमापन दल का कहना है कि उसने समूह की कम से कम 40 अरब येन यानी लगभग 25 करोड़ डॉलर की धनराशि जब्त कर ली है। दल ने बताया कि उसने संगठन के वित्तीय खातों से जुड़े लेन देन रोक कर ऐसा किया है। मुआवजे के लिए आवेदन करने वालों में वे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें समूह की आध्यात्मिक चीजें जबरन बेची जाने के कारण आर्थिक नुकसान हुआ और जिन्होंने बड़ी मात्रा में दान दिया था। परिसमापन दल का कहना है कि समूह की वर्तमान में उपयोग न होने वाली अचल संपत्तियां बेचकर भी पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए और अधिक धन जुटाया जाएगा। दल ने स्पष्ट किया है कि एक वर्ष की निर्धारित समय सीमा के बाद मुआवजे के आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पर्यवेक्षकों का मानना है कि पीड़ितों के लिए मुआवजा प्राप्त करने का ये संभवतः अंतिम अवसर होगा।
1: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर, जापान की प्रधानमंत्री ताकायुची सनाए और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ई जे मियोन के बीच दक्षिण कोरिया में शिखर वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति को अधिक मजबूत बनाने, विशेष रूप से संपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र का भंडार बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 12वें पाठ में हम सीखेंगे राय बताना और समझाना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस में ही रहने वाली चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ टोक्यो के लोकप्रिय पर्यटन स्थल असाकुसा में आई है। अब वो सेंसोजी मंदिर में है और तावीजें देख रही है।
0: जापानी भाषा में तावीज को ओमा मोरी कहते हैं और उन्हें शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं 12वें पाठ की बातचीत।
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: ताम ने एक तावीज उठाया जिसमें घंटी लगी हुई थी और कहा,
2: कोरे कावाई ओ मामोरी देस ने।
1: ये प्यारा तावीज है ना?
0: मिया ने सहमति दिखाते हुए कहा,
3: होंतो कावाई।
1: सचमुच प्यारा है।
0: ताम को एक और तावीज भी पसंद आया,
2: कोरे मो ई देस ने।
1: ये भी अच्छा है।
0: फिर कर्मचारी ने बताया,
4: सोरे वा एन मुसुबी नो मामोरी देस।
1: वो एन मुसुबी का तावीज है। 800 येन का है।
0: ताम को ठीक से समझ नहीं आया कि कर्मचारी ने क्या कहा है।
1: एन मुसु।
0: तब मिया ने समझाया,
3: एन मुसुबी
1: प्रेमी मिलने का तावीज।
0: ये सुनकर ताम ने कर्मचारी से वो तावीज देने को कहा।
2: जा, कोरे ओ कुदासाई।
1: तो फिर ये दे दीजिए।
0: ओमामोरी तरह तरह के होते हैं, व्यापार में सफलता के लिए, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए या परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए। इनके अलावा यहाँ बहुत तरह के ओमामोरी और भी मिलते हैं।

0: अख्ताम ने जोड़ी बनाने वाला तावीज चुना।
1: आज का मुख्य वाक्य है
2: कवाई ओ मामोरी देसु ने,
1: यानी प्यारा तावीज है ना। इस वाक्य को याद करके आप अपनी राय बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
3: कवाई
0: एक विशेषण है और इसका अर्थ है प्यारा।
3: ओमामोरी
0: का मतलब है तावीज,
3: देस
0: का अर्थ हिंदी के है जैसा होता है, और उसके बाद
3: ने
0: लगाने का अर्थ है कि आप दूसरे व्यक्ति की सहमति की उम्मीद करते हैं, यानी आपको लगता है कि उसकी राय भी आपकी राय की तरह होगी।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेषण
3: खवाई
1: की अंतिम ध्वनि ई है। इस तरह जिन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है उन्हें ई विशेषण कहते हैं। विशेषण उस संज्ञा से पहले लगता है जिसकी वो विशेषता बताता है, जैसे
3: खवाई ओ मेमोरी,
1: यानी प्यारा तावीज।
0: लेकिन मियाँ के वाक्य में संज्ञा नहीं है। उसने कहा होन तो कवाई, यानी सचमुच प्यारा है।
1: इस तरह ई विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना भी हो सकता है, जैसे
3: कवाई
1: यानी प्यारा है। अंत में
3: देसने
1: जोड़ने से बनता है
3: कवाई देसने।
1: इससे वाक्य और विनम्र बन जाता है।
0: आज की बातचीत में ताम का एक और वाक्य है
3: कोरे मो ई देसने,
0: यानी ये भी अच्छा है। इसमें एक और ई विशेषण आया है जो ई यानी अच्छा है।
1: तो सुनिए और दोहराइए
3: कवाई कवाई देसु ने कवाई ओ मामोरी देसु ने।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें दो लोग एक टी शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
4: मीते कोनो टी शर्ट्स
5: ओमोशिरोई देसु ने।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा
4: मीते कोनो टी शर्ट्स,
1: देखो ये टी शर्ट।
0: यहाँ
3: मीते
0: क्रिया
3: मीरु
0: यानी देखना का ते रूप है। किसी को अनौपचारिक तरीके से कुछ दिखाते समय इसका इस्तेमाल होता है।
3: कोनो
0: का अर्थ है ये और
3: टी शर्ट
0: का मतलब है टी शर्ट।
1: उसके बाद आदमी ने कहा
5: ओमोशिरोई देसु ने,
0: दिलचस्प है ना।
1: इस वाक्य में ई विशेषण
3: ओमोशिरोई
1: यानी दिलचस्प या मजेदार का इस्तेमाल हुआ है। अंत में ने लगाकर बोलने वाला सुनने वाले की सहमति की उम्मीद कर रहा है।
0: तो आप भी सुनिए और दोहराइए
3: ओमोशिरोई ओमोशिरोई देसु ने।
1: अब राय बताने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आप एक बेकरी में हैं जो स्वादिष्ट ब्रेड के लिए प्रसिद्ध है। वहां आप ये देखकर चौंक गए कि ब्रेड बहुत बड़ी है, तो आपको बोलना है बड़ी है ना। बड़ी को जापानी भाषा में कहते हैं
3: ओकी ओकी।
1: तो कोशिश कीजिए
6: ओकी देसु ने।
0: अब मान लीजिए कि आप एक दुकान में हैं जहां आपने बहुत सुंदर बटुआ देखा है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आप बोलना चाहते हैं महंगा है ना। महंगा को जापानी भाषा में कहते हैं
3: थकाई थकाई।
0: तो कोशिश कीजिए
6: थकाई देसु ने।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए
2: कोरे ओ कुदासाई।
3: कोरे ओ कुदासाई
0: का अर्थ है ये दे दीजिए।
3: कुदासाई
0: का मतलब है कृपया दीजिए। खरीदारी करते समय अपनी पसंद की चीज की तरफ इशारा करते हुए ये शब्द बोल सकते हैं।
1: या रेस्टोरेंट में हो तो मेन्यू में अपनी पसंद के व्यंजन की तरफ इशारा कीजिए और कहिए
3: कोरे ओ कुदासाई।
1: रेस्टोरेंट के कर्मचारी आपकी बात समझ जाएंगे।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए
3: कोरे ओ कुदासाई।

0: तो दोस्तों अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
1: これ、かわいいお守りですね。
2: 本当、かわいい。
1: これもいいですね。
3: それは縁結びのお守りです。800円になります。
4: 縁結び、
2: 恋人ができるお守り。
1: じゃあ、これをください。
5: トラベルガイド।
6: और अब बारी है अंश घूमे मियां के साथ की। आज की बातचीत सेंसोजी मंदिर में हो रही थी, इसलिए आज हम बताएंगे जापान के शिंतो और बौद्ध मंदिरों के बारे में।
0: शिंतो मंदिर यानी श्राइन और बौद्ध मंदिर पूरे जापान में फैले हुए हैं। अधिकतर श्राइनों में जापान के प्राचीन धर्म शिंतो के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जबकि बौद्ध मंदिर बौद्ध धर्म को समर्पित हैं।
6: श्राइन और बौद्ध मंदिर पर्यटकों में भी लोकप्रिय हैं। इसके प्रमुख कारण हैं इन मंदिरों का वास्तुशिल्प, इनमें देखी जा सकने वाली बौद्ध प्रतिमाएं और अन्य कलाकृतियां, और इनके अद्भुत बगीचे।
0: टोक्यो में सेंसोजी मंदिर के अलावा मेजी जिंगू श्राइन लोकप्रिय है। जापान के पश्चिमी क्षेत्र में नारा शहर है, जहां का तोदाईजी मंदिर भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है।
6: इसके अलावा शिमाने प्रीफेक्चर की इजुमो ताइशा श्राइन पौराणिक कथाओं के लिए जानी जाती है।
0: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
6: अगले पाठ में सुनेंगे रोबोट मकान मालकिन हारूजी से ताम की मजेदार बातचीत। तब तक के लिए
0: Sayonara!

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 20 मई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खवानो से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ई जे म्योन के बीच दक्षिण कोरिया में शिखर वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति को अधिक मजबूत बनाने, विशेष रूप से संपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र का भंडार बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। यह वार्ता मंगलवार को ई जे म्योन के गृहनगर आंदोन में आयोजित हुई। दोनों की आखिरी मुलाकात जनवरी में जापान में हुई थी। ताकाइची ने बैठक में कहा कि खास तौर से पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समय बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ई जे म्योन और मेरे नेतृत्व में जापान और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों को सकारात्मक गति से आगे बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाएं। बाद में दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया। ताकाइची ने कहा कि वे पश्चिम एशिया में स्थिति को शांत करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए, जिसमें हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को साझा करने सहित ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। ताकाइची ने आगे कहा कि वे इस समझौते के विवरण पर काम करेंगे। इस बीच ई जे म्योन ने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए अमेरिका और हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमला करने की संभावना को दोहराते हुए यह भी संकेत दिया है कि वे आगामी दिनों में बातचीत के दौरान ईरान की प्रतिक्रिया पर नजर रखने की योजना बना रहे हैं। संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से चल रही वार्ता का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि ईरान ने किसी भी सैन्य आक्रमण का सामना करने की अपनी तत्परता का संकेत दिया है। ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौता करने के लिए मिन्नतें कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि हमें उन्हें एक और बड़ा झटका देना पड़े। अमरीकी राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिया कि वे सीमित समय के लिए ईरान की प्रतिक्रिया पर नजर रखेंगे। इस बीच ईरान के विदेश उपमंत्री काजेम गरीबाबादी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अमेरिका के अनुसार उसने बातचीत को मौका देने के लिए ईरान पर हमले अस्थायी रूप से रोक दिए हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका यह भी कह रहा है कि वो किसी भी क्षण बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह एक धमकी को शांति का अवसर बताने जैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान एकजुटता और दृढ़ता से किसी भी सैन्य आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार है।
1: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: संयुक्त अरब अमीरात पर हालिया ड्रोन हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने दोहराया है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अस्वीकार्य हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के अधिकारियों ने रविवार को घोषणा की कि ड्रोन हमले के कारण देश के पश्चिमी हिस्से में स्थित बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक विद्युत जनरेटर में आग लग गई। IAEA के महानिदेशक रफायल मारियानो ग्रोसी ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने संयंत्र में विकिरण के स्तर को सामान्य बताया और कहा कि किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि संयंत्र काम कर रहा है, इसलिए हमला होने पर रेडियो धर्मी विकिरण का बहुत अधिक रिसाव हो सकता है। ग्रोसी ने यूक्रेन और ईरान में स्थित परमाणु संयंत्रों का उदाहरण देते हुए इस बात पर जोर दिया कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत संरक्षित हैं। G7 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने पेरिस में अपनी 2 दिवसीय वार्ता समाप्त कर ली है। उन्होंने एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर ईरान संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक जोखिमों और नए AI मॉडलों से पैदा खतरों से निपटने के लिए सहयोग का आह्वान किया है। वक्तव्य में जोर दिया गया है कि ईरान संघर्ष के चलते आर्थिक विकास में बाधा और मुद्रास्फीति के जोखिम बढ़ गए हैं। वक्तव्य में क्लॉड मिथोस जैसे उच्च क्षमता वाले नए AI मॉडलों और वित्तीय व्यवस्थाओं को उनसे होने वाले खतरों पर भी बात की गई। G7 ने कहा कि सूचना साझा करने के प्रयास बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीके ढूंढने के लिए वो काम करेगा। G7 ने महत्वपूर्ण खनिजों पर मनमाने निर्यात प्रतिबंधों पर भी चिंता व्यक्त की। उसका कहना है कि ये प्रतिबंध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं। ऐसा लगता है कि ये बात चीन के संदर्भ में कही गई। समूह आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए G7 देशों और समान विचारधारा वाले साझेदारों के बीच सहयोग मजबूत करने तथा बढ़ाने का इरादा रखता है। इस योजना में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। यूनिफिकेशन चर्च के नाम से ज्ञात धार्मिक समूह के परिसमापक ने जापान में संगठन के पीड़ितों से मुआवजे के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। टोक्यो उच्च न्यायालय ने मार्च में इस समूह को देश में धार्मिक निगम के तौर पर भंग करने का आदेश दिया था। न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक अब अगला कदम उठा रहा है। परिसमापक बुधवार से 1 वर्ष तक मुआवजे के लिए आवेदन स्वीकार करेगा। परिसमापन दल का कहना है कि उसने समूह की कम से कम 40 अरब येन यानी लगभग

0: 25 करोड़ डॉलर की धनराशि जब्त कर ली है। दल ने बताया कि उसने संगठन के वित्तीय खातों से जुड़े लेनदेन रोककर ऐसा किया है। मुआवजे के लिए आवेदन करने वालों में वे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें समूह की आध्यात्मिक चीजें जबरन बेची जाने के कारण आर्थिक नुकसान हुआ और जिन्होंने बड़ी मात्रा में दान दिया था। परिसमापन दल का कहना है कि समूह की वर्तमान में उपयोग न होने वाली अचल संपत्तियां बेचकर भी पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए और अधिक धन जुटाया जाएगा। दल ने स्पष्ट किया है कि एक वर्ष की निर्धारित समय सीमा के बाद मुआवजे के आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पर्यवेक्षकों का मानना है कि पीड़ितों के लिए मुआवजा प्राप्त करने का ये संभवतः अंतिम अवसर होगा।
1: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर, जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सनाए और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ई जे मियोन के बीच दक्षिण कोरिया में शिखर वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति को अधिक मजबूत बनाने, विशेष रूप से संपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र का भंडार बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 12वें पाठ में हम सीखेंगे राय बताना और समझाना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस में ही रहने वाली चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ टोक्यो के लोकप्रिय पर्यटन स्थल असाकुसा में आई है। अब वो सेंसोजी मंदिर में है और तावीजें देख रही है।
0: जापानी भाषा में तावीज को ओमामोरी कहते हैं और उन्हें शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं 12वें पाठ की बातचीत।
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: ताम ने एक तावीज उठाया जिसमें घंटी लगी हुई थी और कहा,
2: कोरे कावाई ओ मामोरी देसु ने।
1: ये प्यारा तावीज है ना?
0: मिया ने सहमति दिखाते हुए कहा,
3: होंतो कावाई।
1: सचमुच प्यारा है।
0: ताम को एक और तावीज भी पसंद आया,
2: कोरे मो ई देसु ने।
1: ये भी अच्छा है।
0: फिर कर्मचारी ने बताया,
4: सोरे वा एनमुसुबी नो मामोरी देसु।
1: वो एनमुसुबी का तावीज है।
4: 800 yen
1: का है।
0: ताम को ठीक से समझ नहीं आया कि कर्मचारी ने क्या कहा है।
1: एनमुसु।
0: तब मिया ने समझाया,
3: एनमुसुबी, कोइबितो गा देकिरु ओमामोरी।
1: एनमुसुबी, प्रेमी मिलने का तावीज।
0: ये सुनकर ताम ने कर्मचारी से वो तावीज देने को कहा।
2: जा, कोरे ओ कुदासाई।
1: तो फिर ये दे दीजिए।
0: ओमामोरी तरह तरह के होते हैं, व्यापार में सफलता के लिए, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए या परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए। इनके अलावा यहाँ बहुत तरह के ओमामोरी और भी मिलते हैं। ताम ने जोड़ी बनाने वाला तावीज चुना।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: कावाई ओमामोरी देसु ने,
1: यानी प्यारा तावीज है ना। इस वाक्य को याद करके आप अपनी राय बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
6: कवाई
0: एक विशेषण है और इसका अर्थ है प्यारा।
6: ओमामोरी
0: का मतलब है तावीज।
6: देस
0: का अर्थ हिंदी के है जैसा होता है और उसके बाद
6: ने
0: लगाने का अर्थ

0: है कि आप दूसरे व्यक्ति की सहमति की उम्मीद करते हैं, यानी आपको लगता है कि उसकी राय भी आपकी राय की तरह होगी।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेषण
2: कवाई
1: की अंतिम ध्वनि ई है। इस तरह जिन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है उन्हें ई विशेषण कहते हैं। विशेषण उस संज्ञा से पहले लगता है जिसकी वो विशेषता बताता है, जैसे
2: कवाई ओ मेमोरी,
1: यानी प्यारा तावीज।
0: लेकिन मिया के वाक्य में संज्ञा नहीं है। उसने कहा होन तो कवाई, यानी सचमुच प्यारा है।
1: इस तरह ई विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना भी हो सकता है, जैसे
2: कवाई
1: यानी प्यारा है। अंत में
2: डेस्ने
1: जोड़ने से बनता है
2: कवाई डेस्ने।
1: इससे वाक्य और विनम्र बन जाता है।
0: आज की बातचीत में ताम का एक और वाक्य है
2: कोरे मो ई डेस्ने,
0: यानी ये भी अच्छा है। इसमें एक और ई विशेषण आया है जो ई यानी अच्छा है।
1: तो सुनिए और दोहराइए
2: कवाई कवाई डेस्ने कवाई ओ मेमोरी डेस्ने।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें दो लोग एक टी शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
3: मीते कोनो टी शर्ट्स
4: ओमोशिरोई देसु ने।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा
3: मीते कोनो टी शर्ट्स,
1: देखो ये टी शर्ट।
0: यहाँ
2: मीते
0: क्रिया
2: मीरु
0: यानी देखना का ते रूप है। किसी को अनौपचारिक तरीके से कुछ दिखाते समय इसका इस्तेमाल होता है।
2: कोनो
0: का अर्थ है ये और
2: टी शर्ट
0: का मतलब है टी शर्ट।
1: उसके बाद आदमी ने कहा
4: ओमोशिरोई देसुने,
0: दिलचस्प है ना।
1: इस वाक्य में ई विशेषण
2: ओमोशिरोई
1: यानी दिलचस्प या मजेदार का इस्तेमाल हुआ है। अंत में ने लगाकर बोलने वाला सुनने वाले की सहमति की उम्मीद कर रहा है।
0: तो आप भी सुनिए और दोहराइए
2: ओमोशिरोई ओमोशिरोई देसुने।
1: अब राय बताने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आप एक बेकरी में हैं जो स्वादिष्ट ब्रेड के लिए प्रसिद्ध है। वहां आप ये देखकर चौंक गए कि ब्रेड बहुत बड़ी है, तो आपको बोलना है बड़ी है ना। बड़ी को जापानी भाषा में कहते हैं
2: ओकी ओकी।
1: तो कोशिश कीजिए
3: ओकी देसुने।
0: अब मान लीजिए कि आप एक दुकान में हैं जहां आपने बहुत सुंदर बटुआ देखा है लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आप बोलना चाहते हैं महंगा है ना। महंगा को जापानी भाषा में कहते हैं
2: थकाई थकाई।
0: तो कोशिश कीजिए
3: थकाई देसुने।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए
5: कोरे ओ कुदासाई
2: कोरे ओ कुदासाई
0: का अर्थ है ये दे दीजिए।
2: कुदासाई
0: का मतलब है कृपया दीजिए। खरीदारी करते समय अपनी पसंद की चीज की तरफ इशारा करते हुए ये शब्द बोल सकते हैं।
1: या रेस्तरां में हो तो मेन्यू में अपनी पसंद के व्यंजन की तरफ इशारा कीजिए और कहिए
2: कोरे ओ कुदासाई।
1: रेस्तरां के कर्मचारी आपकी बात समझ जाएंगे।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए
2: कोरे ओ कुदासाई।
1: तो दोस्तों अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
5: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
5: これもいいですね。
6: それは縁結びのお守りです。800円になります。
7: 縁結び
3: 恋人ができるお守り。
5: じゃあこれをください。
2: のトラベルガイド。
0: और अब बारी है अंश घूमे मियां के साथ की। आज की बातचीत सेंसोजी मंदिर में हो रही थी, इसलिए आज हम बताएंगे जापान के शिंतो और बौद्ध मंदिरों के बारे में।
1: शिंतो मंदिर यानी श्राइन और बौद्ध मंदिर पूरे जापान में फैले हुए हैं। अधिकतर श्राइनों में जापान के प्राचीन धर्म शिंतो के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जबकि बौद्ध मंदिर बौद्ध धर्म को समर्पित हैं।
0: श्राइन और बौद्ध मंदिर पर्यटकों में भी लोकप्रिय हैं। इसके प्रमुख कारण हैं इन मंदिरों का वास्तुशिल्प, इनमें देखी जा सकने वाली बौद्ध प्रतिमाएं और अन्य कलाकृतियां, और इनके अद्भुत बगीचे।
1: टोक्यो में सेंसोजी मंदिर के अलावा मेजी जिंगू श्राइन लोकप्रिय है। जापान के पश्चिमी क्षेत्र में नारा शहर है, जहां का तोदाईजी मंदिर भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है।
0: इसके अलावा शिमाने प्रीफेक्चर की इज़ुमो ताइशा श्राइन पौराणिक कथाओं के लिए जानी जाती है।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में सुनेंगे रोबोट मकान मालकिन हारुजी से ताम की मजेदार बातचीत। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। बैन अल्क़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी आईएईए के सरबराह ने मुत्तहिदा अरब अमारात में एक हालिया ड्रोन हमले के बाद इस बात का इरादा किया है कि जौहरी पावर प्लांट्स पर हमले नाकाबले कबूल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुलहुकूमत अबू धाबी में हुक्काम ने इतवार को ऐलान किया कि ड्रोन हमले से मुल्क के मगरबी हिस्से में बरका जौहरी बिजली घर के एक इलेक्ट्रिक जनरेटर में आग भड़क उठी। आईएईए के डायरेक्टर जनरल राफायल मारियानो ग्रोसी ने मंगल को अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में सूरत हाल की वजाहत की। उन्होंने प्लांट में तापकारी की सतह को नॉर्मल करार दिया और कहा कि किसी के जख्मी होने की कोई इतला नहीं है। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि चूंकि बिजली घर फाल हालत में है, बराह रास्त हमला माहौल में तापकारी के बहुत ज्यादा इखराज का सबब बन सकता है। ग्रोसी ने यूक्रेन और ईरान में जौहरी तनसीबात का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि जौहरी बिजली घरों को बैन अल्क़वामी इंसानी कानून के तहत तहफ्फुज़ हासिल है। G7 यानी ग्रुप ऑफ सेवन के वज़राए खजाना और मरकजी बैंकों के गवर्नरों के दो रोजा मुज़ाकरात पेरिस में इख्तिताम पजीर हो गए हैं। उन्होंने एक एलामिया जारी किया है जिसमें ईरान जंग से पैदा होने वाले इक्तसादी खतरात और मस्नूई जहानत या AI के नए मॉडल्स से लाहक होने वाले खतरात से निमटने के लिए तावुन पर जोर दिया गया है। बयान में ये बात जोर देकर कही गई है कि ईरान से मुतल्लिका सूरत हाल के सबब इक्तसादी तरक्की और इफरात जर के हवाले से खतरात बढ़ गए हैं। बयान में क्लॉड मेथोस जैसे आला कारकर्दगी के हामिल नए AI मॉडल्स और उनसे मालियाती निजामों को लाहक होने वाले खतरात का जिक्र भी किया गया है। G7 ने कहा है कि मालूमात के तबादलों में इजाफा करने और बेहतरीन अमली तरीकों की निशानदेही करने के लिए काम किया जाएगा। G7 ने बजाहर चीन का हवाला देते हुए कलीदी मादनियात पर बिला जवाज जकतरफा बरामदी पाबंदियों के बारे में भी तश्वीश का इजहार किया और कहा कि इनसे आलमी सप्लाई चेन में खलल पड़ता है। ममालिक का यह ग्रुप G7 के अराकीन और हम ख्याल शराकत दारों के दरमियान सप्लाई चेन को मतनव्वे बनाने के लिए तावुन को गहरा करने और वसत देने का इरादा रखता है। निजी शोभों को भी मंसूबे में शामिल किया गया है। यूनिफिकेशन चर्च के नाम से मारूफ मजहबी ग्रुप के लिक्विडेटर यानी तस्वियाकार ने जापान में इस ग्रुप के मुतासरीन से जर तलाफी की दरखास्तें कबूल करना शुरू कर दी हैं। मार्च में टोक्यो हाईकोर्ट के फैसले में मुल्क के इस ग्रुप की मजहबी कारपोरेशन की हैसियत कलदम हो गई थी। अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा लिक्विडेटर अब अगला कदम उठा रहा है। लिक्विडेटर बुध के रोज से अगले एक साल तक जर तलाफी की दरखास्तें कबूल करेगा। तस्वीरकारों की टीम का कहना है कि उसने ग्रुप के असासों में से कम अज कम 40 बिलियन येन या तकरीबन $250 मिलियन जब्त कर लिए हैं। टीम के मुताबिक ये रकम तंजीम के मालिक खातों से मुतल्लिक लेन देन को मुअत्तल करके हासिल की गई है। तवक्को है कि जर तलाफी के लिए दरखास्तें देने वालों में वो लोग शामिल होंगे जिन्हें ग्रुप के रूहानी कारोबार से नुकसान पहुंचा था और वो अफराद भी जिन्होंने बड़े बड़े अतियात दिए थे। लिक्विडेटिंग टीम का कहना है कि वो मुतासरीन को मुआवजा देने के लिए मजीद रकम हासिल करेगी और ये फंड ग्रुप की मलकियती ऐसी जायदादों की फरोख्त से हासिल किए जाएंगे जो फिलहाल जेर इस्तेमाल नहीं है। टीम ने कहा है कि एक साल की मुकर्रा मुद्दत के बाद जर तलाफी के दावे कबूल नहीं किए जाएंगे। मुबसरीन का ख्याल है कि यह मुतासरीन के लिए मुआवजा वसूल करने का आखिरी मुमकिन मौका होगा।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। जापान की वज़ीर-ए-आज़म ताकायची सनाए और जनूबी कोरिया के सदर ई जे म्यून ने जनूबी कोरिया में मुलाकात की है। रहनुमाओं ने खित्ते में तवानाई की फराहमी को मजीद पायदार बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। इसमें पूरे हिंद बहरुल काहिल खित्ते के लिए जखीरे को बढ़ाना शामिल है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के इम्कान का इरादा करते हुए इंदिया दिया है कि वो आने वाले दिनों में मुजाकरात में ईरान के रद्दअमल पर नजर रखने का इरादा रखते हैं। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों, तबसरों और तज़ियों के लिए आप जब चाहें विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu

0: पूरी तरह समझ नहीं आती।
1: एनमुसु
0: मिया उसे समझाती है।
2: एनमुसुबी कोइबितो गा देकिरु ओमामोरी।
3: एनमुसुबी बंधन में बंधने का तावीज।
0: ताम अमले की फर्द को तावीज देने का कहती है।
4: जा कोरे ओ कुदासाई।
3: अच्छा तो फिर ये दीजिए।
0: वहाँ मौजूद कई तावीजों में से ताम ने रिश्ता बंधन वाले तावीज का इंतखाब किया।
3: आइए आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
4: これ可愛いお守りですね。
2: 本当可愛い。
4: これもいいですね。
5: それは縁結びのお守りです。800円になります。
4: 縁結び
2: 恋人ができるお守り。
4: じゃあこれをください。
0: आज के सबक का कलीदी जुमला है, बहुत प्यारा तावीज़ है ना।
4: कवाई ओ मामोरी देस ने।
0: अगर आप इसे याद कर लें तो किसी चीज़ के बारे में अपने तासुर का इजहार कर सकते हैं।
3: अब हम आज के कलीदी जुमले की तशरीह करते हैं। कवाई इसमें सिफत है जिसके मायने हैं प्यारा। ओ मामोरी तावीज़ को कहते हैं। देस जुमले के अख्ताम को शाइस्ता बनाने वाला लफ्ज़ है और जुमले के बिल्कुल आखिर में ने उस वक्त लगाते हैं जब आपको तवक्को हो कि मुखातिब आपके एहसास से इत्तेफाक करेगा। आज का नुक्ता इसमें सिफत के बारे में है। कवाई की तरह जो इसमें सिफत ई पर ख़त्म होते हैं उन्हें ई इसमें सिफत कहा जाता है। इसमें सिफत को जिस इस्म से पहले लगाया जाता है वो उसकी सिफत बयान करते हैं। मसलन कवाई ओ मामोरी यानी प्यारा तावीज़।
0: लेकिन अनवर साहब, मियाँ ने तो कोई इस्म इस्तेमाल ही नहीं किया, उसने तो सिर्फ यूँ कहा हों तो कवाई यानी वाकई बहुत प्यारा है।
3: जी हाँ, ये भी ठीक है क्योंकि ई इसमें सिफत अकेला भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे प्यारा यानी कवाई, इसके साथ देस ने लगाकर कवाई देस ने कहा जाए तो ये ज़्यादा शाइस्ता होगा। आज के मकालमे में ताम ने एक और तावीज़ के लिए कहा था कुरेमो ई देस ने यानी ये भी अच्छा है। इसमें ई यानी अच्छा भी ई इसमें सिफत है।
0: अब वक्त हुआ है मश का, तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
6: कवाई कवाई देस ने कवाई ओ मेमोरी देस ने।
0: जी सामीन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
3: अब एक मुख्तसर मकालमा सुनिए जिसमें तहाइफ की दुकान में मौजूद एक टी शर्ट के बारे में गाहक अपना तासुर बयान कर रहा है।
7: मीते कोनो टी शर्ट्स
8: ओमोशिरोई देस ने।
3: अब इस मकालमे की तशरीह।
7: मीते कोनो टी शर्ट्स
0: देखो ये टी शर्ट।
3: मीते ये फेल मीरू यानी देखना की ते शक्ल है जो किसी से कुछ करने के लिए कहने का बेतकल्लुफाना अंदाज है। कोनो के मायनी है ये और टी शर्ट्स दरअसल टी शर्ट का जापानी तलफ्फुज है।
8: ओमोशिरोई देस ने।
0: दिलचस्प है ना।
3: इस जुमले में भी एक ई इसमें सिफत ओमोशिरोई यानी दिलचस्प इस्तेमाल हुआ है और ने अपनी बात की तायीद चाहने का एक अंदाज है।
0: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
6: ओमोशिरोई ओमोशिरोई देस ने।
3: और अब अपना तासुर बताने की मशक। फर्ज कीजिए आप किसी बेकरी में हैं जो मज़ेदार डबल रोटी के लिए मशहूर है। वहाँ आप तवक्को से बड़ी डबल रोटी देखकर हैरान रह जाते हैं। हैरानी के इस तासुर के लिए आप कहेंगे इतनी बड़ी, तो बड़ी को कहते हैं
6: ओकी ओकी।
3: सामीन कोशिश कीजिए।
7: ओकी देस ने ओकी देस ने।
3: अब तसव्वुर करें कि आप तहाइफ की किसी दुकान में हैं और एक खूबसूरत बटवा देखते हैं, लेकिन इसकी कीमत आपकी तवक्को से भी ज़्यादा है। आप अपनी हैरानी का इजहार यूं करेंगे, बहुत महंगा है। महंगा की जापानी है
6: थकाई थकाई।
7: थकाई देस ने थकाई देस ने।
0: जी सामीन, उम्मीद है आपने तलफ्फुज की दुरुस्त अदायगी कर ली होगी।
3: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला ताम का जुमला है, इसे इसी तरह याद कर लें।
4: कोरेओ कुदासाई।
3: कोरेओ कुदासाई यानी ये दीजिए। इसमें कुदासाई के मायने हैं दीजिए। जब आप किसी दुकान से कोई चीज़ खरीदना चाहें या रेस्तोरान में किसी चीज़ का ऑर्डर देना चाहें तो सिर्फ उस चीज़ की जानिब इशारा करते हुए कहें कोरेओ कुदासाई।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 20 मई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला जैन और वायला खवानो से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ई जे म्योन के बीच दक्षिण कोरिया में शिखर वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति को अधिक मजबूत बनाने, विशेष रूप से संपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र का भंडार बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। ये वार्ता मंगलवार को ई जे म्योन के गृह नगर आंदोन में आयोजित हुई। दोनों की आखिरी मुलाकात जनवरी में जापान में हुई थी। ताकाइची ने बैठक में कहा कि खास तौर से पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समय बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ई जे म्योन और मेरे नेतृत्व में जापान और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों को सकारात्मक गति से आगे बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाएं। बाद में दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया। ताकाइची ने कहा कि वे पश्चिम एशिया में स्थिति को शांत करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए, जिसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को साझा करने सहित ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। ताकाइची ने आगे कहा कि वे इस समझौते के विवरण पर काम करेंगे। इस बीच ई जे म्योन ने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए अमेरिका और हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमला करने की संभावना को दोहराते हुए यह भी संकेत दिया है कि वे आगामी दिनों में बातचीत के दौरान ईरान की प्रतिक्रिया पर नजर रखने की योजना बना रहे हैं। संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से चल रही वार्ता का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि ईरान ने किसी भी सैन्य आक्रमण का सामना करने की अपनी तत्परता का संकेत दिया है। ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौता करने के लिए मिन्नतें कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि हमें उन्हें एक और बड़ा झटका देना पड़े। अमरीकी राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिया कि वे सीमित समय के लिए ईरान की प्रतिक्रिया पर नजर रखेंगे। इस बीच ईरान के विदेश उपमंत्री काजेम गरीबाबादी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अमेरिका के अनुसार उसने बातचीत को मौका देने के लिए ईरान पर हमले अस्थायी रूप से रोक दिए हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका यह भी कह रहा है कि वो किसी भी क्षण बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह एक धमकी को शांति का अवसर बताने जैसा है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान एकजुटता और दृढ़ता से किसी भी सैन्य आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: संयुक्त अरब अमीरात पर हालिया ड्रोन हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने दोहराया है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अस्वीकार्य हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के अधिकारियों ने रविवार को घोषणा की कि ड्रोन हमले के कारण देश के पश्चिमी हिस्से में स्थित बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक विद्युत जनरेटर में आग लग गई। आईएईए के महानिदेशक रफायल मारियानो ग्रोसी ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने संयंत्र में विकिरण के स्तर को सामान्य बताया और कहा कि किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि संयंत्र काम कर रहा है, इसलिए हमला होने पर रेडियोधर्मी विकिरण का बहुत अधिक रिसाव हो सकता है। ग्रोसी ने यूक्रेन और ईरान में स्थित परमाणु संयंत्रों का उदाहरण देते हुए इस बात पर जोर दिया कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत संरक्षित हैं। G7 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने पेरिस में अपनी 2 दिवसीय वार्ता समाप्त कर ली है। उन्होंने एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर ईरान संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक जोखिमों और नए AI मॉडलों से पैदा खतरों से निपटने के लिए सहयोग का आह्वान किया है। वक्तव्य में जोर दिया गया है कि ईरान संघर्ष के चलते आर्थिक विकास में बाधा और मुद्रास्फीति के जोखिम बढ़ गए हैं। वक्तव्य में क्लॉड मिथोस जैसे उच्च क्षमता वाले नए AI मॉडलों और वित्तीय व्यवस्थाओं को उनसे होने वाले खतरों पर भी बात की गई। G7 ने कहा कि सूचना साझा करने के प्रयास बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीके ढूंढने के लिए वो काम करेगा। G7 ने महत्वपूर्ण खनिजों पर मनमाने निर्यात प्रतिबंधों पर भी चिंता व्यक्त की। उसका कहना है कि ये प्रतिबंध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं। ऐसा लगता है कि ये बात चीन के संदर्भ में कही गई। समूह आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए G7 देशों और समान विचारधारा वाले साझेदारों के बीच सहयोग मजबूत करने तथा बढ़ाने का इरादा रखता है। इस योजना में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। यूनिफिकेशन चर्च के नाम से ज्ञात धार्मिक समूह के परिसमापक ने जापान में संगठन के पीड़ितों से मुआवजे के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। टोक्यो उच्च न्यायालय ने मार्च में इस समूह को देश में धार्मिक निगम के तौर पर भंग करने का आदेश दिया था। न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक अब अगला कदम उठा रहा है। परिसमापक बुधवार से 1 वर्ष तक मुआवजे के लिए आवेदन स्वीकार करेगा। परिसमापन दल का कहना है कि उसने समूह की कम से कम 40 अरब येन यानी लगभग $25 करोड़ की धनराशि जब्त कर ली है। दल ने बताया कि उसने संगठन के वित्तीय खातों से जुड़े लेन देन रोक कर ऐसा किया है। मुआवजे के लिए आवेदन करने वालों में वे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें समूह की आध्यात्मिक चीजें जबरन बेची जाने के कारण आर्थिक नुकसान हुआ और जिन्होंने बड़ी मात्रा में दान दिया था। परिसमापन दल का कहना है कि समूह की वर्तमान में उपयोग न होने वाली अचल संपत्तियां बेचकर भी पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए और अधिक धन जुटाया जाएगा। दल ने स्पष्ट किया है कि 1 वर्ष की निर्धारित समय सीमा के बाद मुआवजे के आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पर्यवेक्षकों का मानना है कि पीड़ितों के लिए मुआवजा प्राप्त करने का ये संभवतः अंतिम अवसर होगा।
2: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ई जे मियोन के बीच दक्षिण कोरिया में शिखर वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति को अधिक मजबूत बनाने, विशेष रूप से संपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र का भंडार बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 12वें पाठ में हम सीखेंगे राय बताना और समझाना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस में ही रहने वाली चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ टोक्यो के लोकप्रिय पर्यटन स्थल असाकुसा में आई है। अब वो सेंसोजी मंदिर में है और तावीजें देख रही है।
0: जापानी भाषा में तावीज को ओमामोरी कहते हैं और उन्हें शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं 12वें पाठ की बातचीत।
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: ताम ने एक तावीज उठाया जिसमें घंटी लगी हुई थी और कहा,
2: कोरे कावाई ओमामोरी देसु ने।
1: ये प्यारा तावीज है ना?
0: मिया ने सहमति दिखाते हुए कहा,
3: होंतो कावाई।
1: सचमुच प्यारा है।
0: ताम को एक और तावीज भी पसंद आया,
2: कोरे मो ई देसु ने।
1: ये भी अच्छा है।
0: फिर कर्मचारी ने बताया,
4: सोरे वा एनमुसुबी नो ओमामोरी देसु।
1: वो एनमुसुबी का तावीज है।
4: 800 yen
1: का है।
0: ताम को ठीक से समझ नहीं आया कि कर्मचारी ने क्या कहा है।
1: एन्मुसु।
0: तब मिया ने समझाया,
3: एन्मुसुबी, कोई भी तुम्हें देखी रो मामोरी।
1: एन्मुसुबी, प्रेमी मिलने का तावीज।
0: ये सुनकर ताम ने कर्मचारी से वो तावीज देने को कहा।
2: जा, कोरे ओ कुदासाई।
1: तो फिर ये दे दीजिए।
0: ओमामोरी तरह तरह के होते हैं, व्यापार में सफलता के लिए, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए या परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए। इनके अलावा यहाँ बहुत तरह के ओमामोरी और भी मिलते हैं।

0: ताम ने जोड़ी बनाने वाला तावीज चुना।
1: आज का मुख्य वाक्य है
2: कवाई ओ मामोरी देसु ने,
1: यानी प्यारा तावीज है ना। इस वाक्य को याद करके आप अपनी राय बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
3: कवाई
0: एक विशेषण है और इसका अर्थ है प्यारा।
3: ओमामोरी
0: का मतलब है तावीज,
3: देस
0: का अर्थ हिंदी के है जैसा होता है, और उसके बाद
3: ने
0: लगाने का अर्थ है कि आप दूसरे व्यक्ति की सहमति की उम्मीद करते हैं, यानी आपको लगता है कि उसकी राय भी आपकी राय की तरह होगी।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेषण
3: कवाई
1: की अंतिम ध्वनि ई है। इस तरह जिन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है उन्हें ई विशेषण कहते हैं। विशेषण उस संज्ञा से पहले लगता है जिसकी वो विशेषता बताता है, जैसे
3: कवाई ओ मेमोरी,
1: यानी प्यारा तावीज।
0: लेकिन मिया के वाक्य में संज्ञा नहीं है, उसने कहा होन तो कवाई, यानी सचमुच प्यारा है।
1: इस तरह ई विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना भी हो सकता है, जैसे
3: कवाई
1: यानी प्यारा है। अंत में
3: देसने
1: जोड़ने से बनता है
3: कवाई देसने,
1: इससे वाक्य और विनम्र बन जाता है।
0: आज की बातचीत में ताम का एक और वाक्य है
3: कोरे मो ई देसने,
0: यानी ये भी अच्छा है। इसमें एक और ई विशेषण आया है जो ई यानी अच्छा है।
1: तो सुनिए और दोहराइए
3: कवाई कवाई देसु ने कवाई ओ मामोरी देसु ने।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें दो लोग एक टी शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
4: मीते कोनो टी शर्ट्स
5: ओमोशिरोई देसु ने।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा
4: मीते कोनो टी शर्ट्स,
1: देखो ये टी शर्ट।
0: यहाँ
3: मीते
0: क्रिया
3: मीरु
0: यानी देखना का ते रूप है। किसी को अनौपचारिक तरीके से कुछ दिखाते समय इसका इस्तेमाल होता है।
3: कोनो
0: का अर्थ है ये और
3: टी शर्ट
0: का मतलब है टी शर्ट।
1: उसके बाद आदमी ने कहा
5: ओमोशिरोई देसु ने,
0: दिलचस्प है ना।
1: इस वाक्य में ई विशेषण
3: ओमोशिरोई
1: यानी दिलचस्प या मजेदार का इस्तेमाल हुआ है। अंत में ने लगाकर बोलने वाला सुनने वाले की सहमति की उम्मीद कर रहा है।
0: तो आप भी सुनिए और दोहराइए
3: ओमोशिरोई ओमोशिरोई देसु ने।
1: अब राय बताने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आप एक बेकरी में हैं जो स्वादिष्ट ब्रेड के लिए प्रसिद्ध है। वहां आप ये देखकर चौंक गए कि ब्रेड बहुत बड़ी है, तो आपको बोलना है बड़ी है ना। बड़ी को जापानी भाषा में कहते हैं
3: ओकी ओकी।
1: तो कोशिश कीजिए
6: ओकी देसु ने।
0: अब मान लीजिए कि आप एक दुकान में हैं जहां आपने बहुत सुंदर बटुआ देखा है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आप बोलना चाहते हैं महंगा है ना। महंगा को जापानी भाषा में कहते हैं
3: थकाई थकाई।
0: तो कोशिश कीजिए
6: थकाई देसु ने।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए
2: कोरे ओ कुदासाई।
3: कोरे ओ कुदासाई
0: का अर्थ है ये दे दीजिए।
3: कुदासाई
0: का मतलब है कृपया दीजिए। खरीदारी करते समय अपनी पसंद की चीज की तरफ इशारा करते हुए ये शब्द बोल सकते हैं।
1: या रेस्तरां में हो तो मेन्यू में अपनी पसंद के व्यंजन की तरफ इशारा कीजिए और कहिए
3: कोरे ओ कुदासाई।
1: रेस्तरां के कर्मचारी आपकी बात समझ जाएंगे।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए
3: कोरे ओ कुदासाई।
1: तो दोस्तों अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: これ、かわいいお守りですね。
7: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
8: それは縁結びのお守りです。800円になります。
9: 縁
7: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
3: トラベルガイド।
0: और अब बारी है अंश घूमे मियां के साथ की। आज की बातचीत सेंसोजी मंदिर में हो रही थी, इसलिए आज हम बताएंगे जापान के शिंतो और बौद्ध मंदिरों के बारे में।
1: शिंतो मंदिर यानी श्राइन और बौद्ध मंदिर पूरे जापान में फैले हुए हैं। अधिकतर श्राइनों में जापान के प्राचीन धर्म शिंतो के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जबकि बौद्ध मंदिर बौद्ध धर्म को समर्पित हैं।
0: श्राइन और बौद्ध मंदिर पर्यटकों में भी लोकप्रिय हैं। इसके प्रमुख कारण हैं इन मंदिरों का वास्तुशिल्प, इनमें देखी जा सकने वाली बौद्ध प्रतिमाएं और अन्य कलाकृतियां, और इनके अद्भुत बगीचे।
1: टोक्यो में सेंसोजी मंदिर के अलावा मेजी जिंगू श्राइन लोकप्रिय है। जापान के पश्चिमी क्षेत्र में नारा शहर है, जहां का तोदाईजी मंदिर भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है।
0: इसके अलावा शिमाने प्रीफेक्चर की इजुमो ताइशा श्राइन पौराणिक कथाओं के लिए जानी जाती है।
1: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में सुनेंगे रोबोट मकान मालकिन हारूजी से ताम की मजेदार बातचीत। तब तक के लिए
1: सायनारा।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। बैनुल्अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के सरबराह ने मुत्तहिदा अरब अमारात में एक हालिया ड्रोन हमले के बाद इस बात का इआदा किया है कि जौहरी पावर प्लांट्स पर हमले नाकाबले कबूल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुलहुकूमत अबूधाबी में हुक्काम ने इतवार को ऐलान किया कि ड्रोन हमले से मुल्क के मगरबी हिस्से में बरका जौहरी बिजली घर के एक इलेक्ट्रिक जनरेटर में आग भड़क उठी। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफायल मारियानो ग्रोसी ने मंगल को अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में सूरत हाल की वजाहत की। उन्होंने प्लांट में तापकारी की सतह को नॉर्मल करार दिया और कहा कि किसी के जख्मी होने की कोई इतला नहीं है। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि चूंकि बिजली घर फाल हालत में है, बराह रास्त हमला माहौल में तापकारी के बहुत ज्यादा इखराज का सबब बन सकता है। ग्रोसी ने यूक्रेन और ईरान में जौहरी तंजीबात का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि जौहरी बिजली घरों को बैनुल्अक़वामी इंसानी कानून के तहत तहफ्फुज़ हासिल है। G7 यानी ग्रुप ऑफ सेवन के वज़राए खजाना और मरकजी बैंकों के गवर्नरों के दो रोजा मुज़ाकरात पेरिस में इख्तिताम पजीर हो गए हैं। उन्होंने एक एलामिया जारी किया है जिसमें ईरान जंग से पैदा होने वाले इक्तसादी खतरात और मस्नूई जहानत या AI के नए मॉडल्स से लाहक होने वाले खतरात से निमटने के लिए ताउन पर जोर दिया गया है। बयान में ये बात जोर देकर कही गई है कि ईरान से मुतल्लिका सूरत हाल के सबब इक्तसादी तरक्की और इफरात जर के हवाले से खतरात बढ़ गए हैं। बयान में क्लॉड मेथोस जैसे आला कारकर्दगी के हामिल नए AI मॉडल्स और उनसे मालियाती निजामों को लाहक होने वाले खतरात का जिक्र भी किया गया है। G7 ने कहा है कि मालूमात के तबादलों में इजाफा करने और बेहतरीन अमली तरीकों की निशानदेही करने के लिए काम किया जाएगा। G7 ने बजाहर चीन का हवाला देते हुए कलीदी मादनियात पर बिला जवाज जकतरफा बरामदी पाबंदियों के बारे में भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि इनसे आलमी सप्लाई चेन में खलल पड़ता है। ममालिक का ये ग्रुप G7 के अराकीन और हम ख्याल शराकत दारों के दरमियान सप्लाई चेन को मतनव्वे बनाने के लिए ताउन को गहरा करने और वसत देने का इरादा रखता है। निजी शोभों को भी मंसूबे में शामिल किया गया है। यूनिफिकेशन चर्च के नाम से मारूफ मजहबी ग्रुप के लिक्विडेटर यानी तस्वियाकार ने जापान में इस ग्रुप के मुतासरीन से जर तलाफी की दरखास्तें कबूल करना शुरू कर दी हैं। मार्च में टोक्यो हाईकोर्ट के फैसले में मुल्क के इस ग्रुप की मजहबी कारपोरेशन की हैसियत कलदम हो गई थी। अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा लिक्विडेटर अब अगला कदम उठा रहा है। लिक्विडेटर बुध के रोज से अगले एक साल तक जर तलाफी की दरखास्तें कबूल करेगा। तस्वीरकारों की टीम का कहना है कि उसने ग्रुप के असासों में से कम 40 बिलियन येन या तकरीबन $250 मिलियन जब्त कर लिए हैं। टीम के मुताबिक ये रकम तंजीम के मालिक खातों से मुतल्लिक लेन देन को मुअत्तल करके हासिल की गई है। तवक्को है कि जर तलाफी के लिए दरखास्तें देने वालों में वो लोग शामिल होंगे जिन्हें ग्रुप के रूहानी कारोबार से नुकसान पहुंचा था और वो अफराद भी जिन्होंने बड़े बड़े अतियात दिए थे। लिक्विडेटिंग टीम का कहना है कि वो मुतासरीन को मुआवजा देने के लिए मजीद रकम हासिल करेगी और ये फंड्स ग्रुप की मलकियती ऐसी जायदादों की फरोख्त से हासिल किए जाएंगे जो फिलहाल जेर इस्तेमाल नहीं है। टीम ने कहा है कि एक साल की मुकर्रा मुद्दत के बाद जर तलाफी के दावे कबूल नहीं किए जाएंगे। मुबसरीन का ख्याल है कि यह मुतासरीन के लिए मुआवजा वसूल करने का आखिरी मुमकिन मौका होगा।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। जापान की वज़ीर-ए-आज़म ताकायची सनाए और जनूबी कोरिया के सदर ई जे म्यून ने जनूबी कोरिया में मुलाकात की है। रहनुमाओं ने खित्ते में तवानाई की फराहमी को मजीद पायदार बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। इसमें पूरे हिंद बहरुल काहिल खित्ते के लिए जखीरे को बढ़ाना शामिल है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के इम्कान का इरादा करते हुए इंदिया दिया है कि वो आने वाले दिनों में मुजाकरात में ईरान के रद्द अमल पर नजर रखने का इरादा रखते हैं। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों, तबसरों और तज़ियों के लिए आप जब चाहें विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu